0: ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह
1: ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह
0: ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह
2: कबूल है।

0: जाँच गरिन्छ।
1: स्मरण रहोस्, दैनिक विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा बिरामी जाँच, दृष्टि विशेषज्ञद्वारा आँखा जाँच तथा चस्मा पनि तयार गरिन्छ।
2: चाइना मेडिकल हल भुरी गाउँमा जिल्ला अस्पताल गुलरिया बर्दियामा कार्यरत MBBS MD कन्सल्टेन्ट फिजिसियन छाती, मुटु, पेट, नसा, थाइराइड, दम तथा मधुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्टर सूर्य प्रकाश शाहका साथै दृष्टि विशेषज्ञ नेहा शाह र पूर्व जनस्वास्थ्य निरीक्षक हेल्थ असिस्टेन्ट SY नवीन शाहबाट बिरामी चेक जाँच गरिन्छ।
0: चाइना मेडिकल हल भुरीगाउँ बजार बर्दिया वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टी। नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 442 55 909 र 98 442 57 517।
3: होइन दिदी, किन निराश भएर बस्नु भएको?
4: छोराको बिहेको दिन पनि आइसक्यो। आकर्षक गरगहना कुन पसलबाट ल्याउने होला भनेर सोचिरहेछु नि बहिनी।
3: त्यति धेरै केही सोच्नै पर्दैन नि दिदी, भुरीगाउँ बजारमा रहेको नरेश सुनसादी पसलमा जानुहोस् न, त्यहाँ त हामीले सोचे भन्दा पनि राम्रो र आकर्षक गरगहना पाइन्छ नि।
1: हाम्रा सेवाहरू, हामी कहाँ नम्बर 1 सुनचाँदीका गरगहनाहरूमा इन्डियन मंगलसूत्र, हारवाला, छड्के तिलहरी, फुली जुलीका साथै विभिन्न डिजाइनका आकर्षक गरगहनाहरू बनाइन्छ।
0: नरेश सुनचाँदी पसलको शाखा अब बगनाहा बजारमा पनि।
5: प्रोप्राइटर नरेश सुनार, नरेश सुनचाँदी पसल भुरीगाउँ बजार बर्दिया। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 484 54 304।
0: जीत पुरवाली, यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
6: हाँ, तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागत है। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत है। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
0: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
7: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
8: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
9: गर्जन सधै बाघ झैं, रेडियो टाइगर 99.2 MHz।

0: चीज पैसा थोड़ी होता है।
1: ओ इश्क भी कोई चीज है, खुदा है दवा है, ओ जानी तुझे मेरी ये बदुआ है कि चाहोगे।

0: नमस्ते, मैं हूँ सारा अली खान।
1: मैं हूँ विकी कौशल।
0: वी होप यू लव दिस म्यूजिक वीडियो।
1: डू लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल।
2: तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए।
3: रेडियो टाइगर 99.2 MHz नामै काफी छ। Radio Tiger Studio Time। यति बेला रात्रिको 9 बजेको छ।
0: हवस् त, यतिन्जेल रेडियो टाइगर सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। आजलाई हाम्रो नियमित प्रसारण यति नै। तपाईँको मिठो निन्द्राको कामना गर्दै हामी पनि विदा माग्छौं। शुभरात्री।